सो क्यों बिसराज अग्न मैं राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरा जे बेखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै, गुरपुरे ताते बुझाया। प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एका मान, त्याग जपो वरनाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो।

ही सुभाव नेत्रों पेख दर्श खोए मन बिकसे साध चरण धोए भगजना के मन तन रंग बिरला को पावे सांग एक बस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकी उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ भगसांत दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्ब कटां करत प्रतपाल।

जय अवगित भगत दयाप, जय पसरे पास सार संत प्रताप। दूं पाक कापे धनी उनकी शोभा, नुह बनी आपे कौत करे अनंत चोज। आपे रस भोग नर जोगा, जिस भावे तिसे आपण न लावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। बेसमार यथा गणत्या तोलै, ज्यों बलावो त्यों नानक दास बोलै। श्लोक है।

जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक ने भी खेप मारी, प्रभ की उस्तत करो संत मीता, सावधान एकाग्र चीता, सुखमणि सहज गोबिंद गुण राम, जिस मन बसे सोत निदान, सर्व इच्छा ता की पूर्ण हुए प्रधान, पुरखा प्रगट सब लोहे सब ती उच पाए स्थान, वरना हुए आवन जान अर्तन खाड़ चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त हुए खेम शांत, रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्धा, विद्या ताप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रकाश, सब कै मद सगलती उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, सुमदर सी एक दृष्टेता, हे फल दिस जन कै मुख भणे, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, इहो निदान जपे मन कोए, सब जुग मैं ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखा।

साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारिया चौ साहबजादियां चालिया मुक्तियां हटिया जपिया तपिया जिन्हां नाम जपिया मन छकिया देख चलाई ते गवाही दे के अंड किता तना प्यारिया सजियारिया की कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्मे सीस दिते बंद बंद कटवाए खुपरियां लवाइया चरखड़िया ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरुद्वारिया की सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सिखी के सवासा संघ ने भाई तिना की कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावन चेतावन का सदका सर्ब सुख वे जां जां खालसा जी साहिबता तरछ रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दर्शन शनान चमकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा का मन नीवा मत उची माता रख आप अकाल पुरख वाहिगुरु है अकाल पुरख अपने पंधे सदा साई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब तर गुरुद्वारिया गुरु धामा जिन्हों पंथ में छोड़िया गया खुले दर्शन की दार सेवा संभाल दान प्यारे खालसा जी ने मुख निमाणिया दे मान साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हमार दरक सेवक परिवार रजिंद्र कौर वालों अपने दोते मार्ग सरविन कहते सरविन अपने पोते एवन सरविन सुखजीवन कौर ढेसी वालों अपने बेटे अर्जन ढेसी सरविन के जन्मदिन दुशियां सरदार चरण प्रसाद सुखनी साहब जी के जाप करवाए गए शब्द कीर्तन हुए शिव पुरन साहब जी गायन हुए समझियां सेवावान निभाद भुला दी माफ बख्शनी गावे सुस्पष्ट बाण पढ़ने बख्शनी कृपा करनी परिवार के सिर पर मेहर प्रार्थना रखना बच्चे के सिर पर मेहर प्रार्थना बच्चे माता आज्ञाकारी बना उच्च दान बख्शना चढ़ती करदाता बख्शनियाँ परिवार सुख शांति चढ़ चढ़ी करदाता बख्शनियाँ परिवार ने खुशियां सोने रुमाले भेट करने के अंगीकार करने देख सज के हाजिर दर प्रवान होवे प्रवान है प्रसाद सिंह वरतौन की आज्ञा बख्शो। सुखनी साहब जी के पाठ जी की अरदास शब्द कीर्तन आनंद साहब जी की अरदास पुछक माफ करने सु बेनतियाँ गुरमत सार प्रवान करद बख्शो लाई श्री मुखवाक सही प्यारे मेल जना मिलिया तेरा नाम चेता वह नानक नाम चढ़ दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ही जाहों करी ना होई, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई, लखिया रहाओ जात मह जोत, जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहिया, तू सच्चा साहेब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहिया।

जानम जय प्रत परिया चुन चुन सतरु हमारे मरिया देख देख जग में दो चल राखा मह और न दला तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज

तो है। अपना जान करो व्रत पारा, तुम साहेब मैं किंकर थारा, दा जान दा हाथ उबारो, हमरे सब ऐरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को त्याना, बहुर करूं कविता बिदनाना, कृष्ण कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूकोए कब लेहो सुधारो, कब बाज दोहरा, जो निज ब्रह्मो सो कहा, सो कहे हौ जग माहे, ज्योते प्रभु को त्याय है, अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा, हर हर जंदुई एक है, विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यो, जल ही बिखे समाहे दोहरा, जब आए प्रभु को पयो, जन्म तराग जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कैद सुनाए, कब बाज दोहरा, ठाट पयो मैं जोर कार, बचन कहाँ सिर न्याय, पंथ चला तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहरा, जे जे तुमरे ध्यान को नितुड़त्याय है संत, अंत लहेंगे मुक्त फाल, पावेंगे भगवंत दोहरा, कालपुर की देह मोह, कोटक विष्ण महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते, रावसस क्रूर जलेश दोहरा, राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भागत नेत, सुर्गवास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत चौपाई, जो ये कथा सुने अर गावे, दुख पाप दे निकट न आवे, विष्ण भगत की ये फल होई, आद ब्याद शब सके न कोई, सम्मत सत्रह सास पचावन, हाड़ बदी प्रथम सुख दावन, त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, फूल भरी लो लिहो सुधारा दोहरा, नेत्र तुमके चरण तार, सद्रव तीर तरंग, श्री भगवत पूर्ण कियो रघुवर रघुबर कथा प्रसंग दोहरा, साध असाध जानो नहीं, बाद सुबाद विवाद, ग्रंथ सगल पूर्ण कियो, भगवत कृपा प्रसाद सवैया, पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहुभेद गहे हम एक ना जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कार, मैं ना कहे

आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मानव जिया वाधाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आइया, शब्दोता गावो हरी केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या ना ही करते राय, करता तेरा सब कुछ है, जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या ना ही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, करसात सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो, जिस दिया ए वडे आईया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द घर सभागा, घर सभागा शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत दवास कीते, काल कंटुक मारिया, तुर गर्म पाया तुद जिन काओ, से नाम हर के लागे, कहे नानक तै सुख होवा, तितकर अनहद वाजे, अणद सुनो बट भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहे प्रभूरे, बिनवंत नान गुर चरण लागे, वाजे अनहतूरे, मुदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पयो, ससंतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब आधारो, जेको खावे जेको पुंछै, जिसका हुए उधारो, ए वस्त जी नह जाई, नित नित राघुर धारो, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म बसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जो की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, तरस पया मेह रामत होई, सतगुरु सज्जन मिलया, नानक नाम मिलैता जीवा, तन मन थी वह हरिया पौड़ी, किथे तू समरथ जिथे कोए नाहे, उथे तेरी रख अग्नि उधर माहे, सुनके जम के दूत नाहे, तेरा छड जाहे, भव जल बिखमस गाह।

सुख कण कोई न जाने तुमरा अंत उचेते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो।

दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याहे श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सुहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिह जिथे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया करना उन दया में ताय सब थाई हुए सुहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सुहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होवे प्रभ मेरा एह बेनंती सुन प्रभ मेरे बेनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेहरे

चरण गहाँ बको शुभ रसना दीजै प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो

तन तन कुटुंब सभाया मिथिया मैं ममता माया मिथिया राज जोवन तनमाल मिथिया काम क्रोध विकराल मिथिया रथ हस्ती असवस्त्रा मिथिया रंग संग माया पीक हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्याया पशु पर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने हैं मिथ्या हस्त पर दर्व गोहरे मिथ्या नेत्र विगत पर तिरिया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लो लुआवे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेद विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पै सबल दे नानक हर हर नाम ले वृत्ति सागत की आर जा सच बिना कह उपद सुचा

साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग परटे सो ज्ञान, साध के संग मुझे प्रम नेरा, साध संग सब होत नवेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रभुले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमदरस पुंचा, साध संग हुए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बहन, साध के संग न कतून धावे, साध संग स्थिर मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कह संग मां पुनीत, साध संग के स्योने बैर, साध के संग न बिगा पैर।

प्रभु बने आई। साध के संग न कबू तावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त गुचर लहे, साधु के संग आजर सहे। साध के संग बसे थान उचे, साधु के संग महल पहुंचे।

ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता ब्रह्म ज्ञानी कै होय अचंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवया ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट पागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोज जाए महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सत जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ कनाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम सर्व में पिखे भगवान निमख निमख ठाकर नमस्कार नानको आ परस सगल निस्तारे अष्पदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रिया रूप न पिखे नेत्र साधकी डैल संत संगेत कर्ण ना सुने काउ की निंदा सबते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद बिख्या पर हरे मन की बास न मनते डरे इंद्री जत पंच लोक ते रहत नान कोट मदे को ऐसा परस वैष्णव सो जैसे ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वे न कर्म तिस वैष्णव का निर्मल धर्म काउ फल की ईशा नहीं वासे केवल भगत कीर्तन संग्राच मंतने अंतर सिमरन गोपाल सवे ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरा नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्का संग मनते मिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सात संग पापा मल खोवे तिस भौती कीमत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नितनीत मंतने अर्पे विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम आत्म में सोधे राम नाम सारस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे हर के कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण सिमृत बुझे मूल सुख में जाने अस्थूर चौं वरना को दे उपदेश नानक।

पसरियो आबोय अनंत रंग लखे न जाए पार मम के रंग जैसी मध्य तैसा प्रगास पार मम करता मनास सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक

वेदे अनक प्रकार अष्टपदी कई कोड होए पुजारी कई कोड चार व्यवहारी कई कोड पै तीर्थवासी कई कोड बन भरम उदासी कई कोड वेद के स्रोते कई कोड तपी स्रोते कई कोड आदम ध्यान तारे कई कोड कव का विचारे कई कोड नपतर नाम त्यावे नानक करते का अंत न पावे कई कोड पै अभिमानी कई कोड अंध ज्ञानी कई कोड किरपन कठोर कई कोड बेगातम निकोर कई कोड पर दर्व को हिरे कई कोड पर दुख न करे कई कोड माया शरमाए कई कोड पर देश प्रमाए जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोड सिद्ध जदि योगी कई कोड राजे भोगी कई कोड पंखी सर्व उपाए कई कोड पात्र बिरख ने बजाए कई कोड पौन पानी वै संतर कई कोड देश भूमंडल कई कोड सजियर सूर नखत्र कई कोड देव दान महेंद्र सिर शत्र सगल समग्री अपने सूद धारे नानन जिस जिस भावे तिस तिस तारे कई कोड राज तम साधक कई कोड वेद प्राण सिमरत शास्त्र कई कोड की ए रतन समुंद कई कोड नाना प्रकार जंत कई कोड की ए चिर जीवे कई कोड गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोड जग निमसाज कई कोड भूत प्रे सुकर मृगा सब ते नेरे सबू ते दूर नानक आप लितरिया भरपूर कई कोड पताल के वासी कई कोड नरक सुर निवासी कई कोड जन्मे जीवे मरे कई कोड बो जोनी फिरे कई कोड बैठती ही खाए कई कोड काले थक पाए कई कोड किए तनवंत कई कोड माया में चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नान सब कुछ प्रभ कह हाथे कई कोड भय बैरागी राम नाम संगतिन लागी कई कोड प्रभ को खो जानते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोड दर्शन प्रप्यास तिनको मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोड मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नान ते जन सदा धन धन कई कोड खाणी अरखंड कई कोड काश ब्रह्मंड कई कोड होए अवतार कई जूत कीनो विस्तार कई बार पस्यो पसार सदा सदा के कंकार कई कोड कीने बहुपात प्रभ ते होए ब्रह्मा समार ताका अंत न जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोड पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोड तत के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोड नाम रस पीवे अमर पय सत सद ही जीवे कई कोड नाम गुंगावे आत्म रस सह समावे अपने जन को सास सास मारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे श्लोक कण कण प्रवे कह दूसर नाही कोय नानक तिस बलिहार ने जल थल मैयल सोए अष्टपदी कर्ण करावण करने जो जो तिस भावे सोई हो किन में था बुध अपन हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तार धर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर दिखे अपनी वड्याई नान समय रिया समाये प्रभ पावे मानुख गत पावे प्रभ पावे ता पात्र त्रावे

इसका बल नहीं सहात कर्ण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपराजी हो ज्योतिष पावे सोई पुनती हो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हर क्रंग हसे कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकाश प्यार कबू बेता ब्रह्म चार नानक आप मिलावन हार कबू नृत करे भवपात कबू सोए रह दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो द्रवाल

करे धर्म राय तिस करे खुआरी। गुरु प्रसाद जाका मिटे महान सो जन नानक दरगे प्रवान। कोट कर्म करे ओ तारे शर्म पावे सगले फिर तारे। अंक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर फिर अवतार। आनक जतन करे आत्म नहीं दरवे हर दरगे को कैसे गवे। आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निक न आवे। सर्व की रेन जाका मनोए कहो नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछोए तब इसको सुगुनाई कोए। जावे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निचल नाई चीर। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानको छूटे।

सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर सुख होए बट भागी किसे प्राप्त होए। कर्ण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावण करने आर इसके आदका विचार। जैसी दृश करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए। जो किस किन्नो सो अपने रंग सब दे दूर सबों के संग। बुझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक।

उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा मित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की रोग न सुखते डरे, संत के दुखी को नाई ठाओ, नान संत पावे तले मिलाए, संत का दुखी अद बीज ते रुटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान भरमाइए, संत का दुखी अवजल पाइए, संत का दुखी अंतर के अंतर ते थोथा, जिन सास बना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किशनाए, आपन बीजा पे खाए, संत के दुखी को अपना रखनहार, नान संत पावे ता ले उबार, संत का दुखी यो बिल लाए, जो जल भी हून मछली तरफड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पाव की तन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआड़ तिल खेत माइन दुवेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथ्या कैद, किरत निंद का तुरी पया, नान ज्योतिष पावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगे मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजना आसा, संत का दुखी उठ चले निरासा, संत के दुख न दृष्टे कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए पया, कीर्तन मेटे कोए, नान जाने सच्चा सोए, साव कर दिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास करा, सब के बरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया,

वचन हर नाम उचरे। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हल्द पल सुवारे, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। आपस को कर कछ नाम जनावे, हर नाम दे सत्यावे। मन में सतगुर के भाव ते सेवक के कार्य रास। सेवा करत होए नकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मात ले। भीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने।

कुदे। मोह माया के संग न ले मन में रखे हर हरे अंधकार दीप प्रकाशे नान परम मोह दुख दाते नासे तप्त माए ठाण बिरताए अंध पिया दुख नाठे पाए जन मन के मिटे देसे साधु के पूर्ण उपदेशे पाव चुका निर्भव होए बसे सकल व्याध मंते कह न से जिसका साधन कृपा धारी साध संग जब नाम मुरारी तित पर चुके परम गमन सुन नानक हर जन सर्वण निर्गुण आव सर्वगुण भी हो ही सकला धार जन सगली मोही

रचाओ मंत्र अंतरे स्वाओ। नेत्रों पे एक दर्शको हे मन विकसे सा चंतो हे भक्त जना के मंत्र रंग बिरला को उपावे संग एक बार दीजे कर मैया गुरु प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाये।

पवन के स्वद मन मोचा न खाए मन जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पशु प्रगट जाए मन मग न चल पंथ मन धर्म सति संबंध

ना पेख ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाना है मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दर गए मानो।

परिहत बैर तंदे पानी धोते उतरस खे मोद पलीति कपड़ होए दे साबुन लिया ओहो धोए परिय मर पापा कै संग ओहो धोपै नावै कै रंग।

कवण सरते महाकवण जतो आकार वेल न पाया पंडती दे होवे लेख पुराण वक्त न पायो का दिया दे लिखन ले कुरान।

का कोई जेको खाए के आखण पाए ओहो जाने जेतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आखें सिपे के जिसनो बख्शा सिवत सैला नानक पातशाही पातशाह अमल गुण अमल व्यापार अमल व्यापारी अमल भंडार।

एकामाई युक्त व्याई तिंचल परवाण एक संसारिक भंडारी कलाए दी बाण जीवित

जो न राजमाल मन सोर, जो न श्रुति ज्ञान विचार, जो न जुगति छुटाए संसार, जैसा जोर कर वेखा सोए, नानक उत्तम नीच न कोए।

जुगत के रंग तिनके नामा ने के अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सुहाना पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच बकाई उथे पाए नानंगे आ जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पौन पाणी वैसंतर केते कान महेश केते बरमे काढ़ घड़ी है रूप रंग के वेश

शांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तथ्य नाल विनोद कोड आनंद चरम खंड के बाणी रूप तथ्य कार्त करिया बहुत अनूप ताकि अगला कथिया न जाए जे को कह पिछे पछताए तथ्य करिए सुरत मत मन बुद्ध तथ्य करिए सुरा सदा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तथ्य होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूरत में राम रहया परपूर तिथे सीतो सीता महमा माए ताके रूप न कथने जाए ना उ मरे न ठाके जाए जिनके राम वसै मन माए तिथे भगत वसै क्या लोक रैन सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेख नर निहाल तिथे

जत बहर धीर सुनियार अरण मत वेद हथियार पौखला गंतवताओ भांडा पाओ अमृत ताल कड़िया सब सचे टकसार जिनको न

जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दशमी शपे छंद त्वै प्रसाद चक्र चिहन अर मरण जात अर पात नहंजे रूप रंग रे पे को कह ना सकत कह अचल मूर्तन भव प्रकाश संतोष कह जय कोट इंद्र इंद्राण शाहे शहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रजा छंद नमस्तम काले नमस्तम कृपाले नमस्तम रूपे नमस्तम नूपे नमस्तम भेखे नमस्तम लेखे नमस्तम काये नमस्तम जाये नमस्तम गंजे नमस्तम पंजे नमस्तम नामे नमस्तम ठामे नमस्तम कर्म नमस्तम धर्म नमस्तम नाम नमस्तम धाम नमस्तम जीते नमस्तम पीते नमस्तम वाहे नमस्तम डाहे नमस्त नीले नमस्त नादे नमस्त शेदे नमस्त गादे नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त नामे नमस्त ठामे नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त उदारे नमस्त अपारे नमस्त सुके नमस्त अनेके नमस्त भूते नमस्त जुपे नमस्त निर्कर्मे नमस्त निर्भरमे नमस्त निर्देशे नमस्त निर्भेशे नमस्त निर्नामे नमस्त निर्कामे नमस्त निर्धाते नमस्त निर्गाते नमस्त निर्दूते नमस्त भूते नमस्त लोके नमस्त शोके नमस्त निरतापे नमस्त थापे नमस्त त्रिमाने नमस्त निर्धाने नमस्त अगाहे नमस्त अबाहे नमस्त त्रिवर्गे नमस्त सर्गे नमस्त प्रभोगे नमस्त जोगे नमस्त रंगे नमस्त पंगे नमस्त गम्य नमस्त सतरमे नमस्त जलाश्रे नमस्त नराश्रे नमस्त जाते नमस्त पाते नमस्त मजवे नमस्त सत अजवे आदेश देशे नमस्त भेसे नमस्त नृदामे नमस्त नृवामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्त सतदेवे नमस्त भेवे नमस्त जन्मे नमस्त सुबनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व भौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्त सत दयाले नमस्त वरणे नमस्त मरणे नमस्त जरार नमस्त किरदार नमो सर्व तंदे नमो सत बंदे नमस्त साके नमस्त निर्वाके नमस्त रहीमे नमस्त करीमे नमस्त अनंते नमस्त महंते नमस्त सतरागे नमस्त सुहागे नमो सरसोख नमो सरपोख नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वबाले चाचरी छंद द्वय प्रसाद रूप है नूप है जू है भू है लेख है पेख है नाम है काम है देह है बे है जीत है पीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है सर्ग है नील है नाद है जय है जाद है जन्म है अजन्म है वर्ण है भूत है भरण है गंज है बंज है जूज है जंज है मीक है रफीक है दंद है बंद है निर्भूज है सूज है काल है जाल है ला है जा है नंत है महंत है लीक है नृसीक है निलंब है संभ है गम है जम है भूत है शूत है लोक है शोक है कर्म है परम है

रूपे नमो शाह शाह नमो भू भूपे नमो दान दान नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्ते शनान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट नमो तंत्र तंत्र सदा सदा सचदानंद समर्पणसी नूपे रूपे समस्त निवासी

देश और नभे जाकर रूप रेखना राग जतर ततर साव साव पैन राग नाम का महीन पेग ताम न जाए सर्वमान सर्वत्र मान से मान ताहे

जानी जे भेद और कतेव रूप रंग न जात पात सुजानी के जेव तात मात्र जात जाकर जन मन विहीन चकर मगर फिरे चतर चक मानी प्रतिहीन लोक चौदह के बिखे जग जापी जय जाप आदि देवनाद मूर्त थाप्यो समझे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सर च्यो सुम गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख भेस अंग राग नरंग जागे जात पात्र नाम गर्व गंजन दुष भंजन मुकदाय काम आप रूप मी कान उस्तत एक पुरख अवधूत गर्व गंजन सर्व भंजनाद रूप सूत अंगहीन भंगनाथ में एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को

अनंगी न मित्रभंगी त्रिकामेन्द्रभंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साक्षरी कै मितो अमी कै सेव प्रवाह है जय है जा है भक्ति छंद प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है में सुलसला में समस्त रुकला में के साहिब दिमागे के उसल चरागे के कामल करीमे के राज करीमे के रोजी दहन है के राज कर रहन है क्रीमल कुमाल है के उसल जमाल है गनी मुल्क राज है गरीब लिवाज है हरी फुल सुकिन है रासल विकिन है कलंकन बनास है समस्त निवास है गंजल गनी में रजाय करीमे है।

खंड आन गण प्रणाम मुनमन सलाम हर नर खंड बर नर मंड अनुभव नास मुनमन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल तन मदाम अंश अंग असन भंग

सैम भुजांग भुजा छंद नमो सुसु जे नमो चंद चंद्रे नमो राज नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकार नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीज नमो राजसंत रूपे नमो परम तत्म दत्तम स्वरूपे नमो जो जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे

सदा सचिदानंद शतरम प्रणासी क्रीम मुलकुनंदा समस्त निवासी जाय विभूत जाय गनी में हरियं करियं क्रीम रही में।

करेंगे कोट से नानक जातक दाना अनेक सुअंबर साज भरेंगे। ब्राह्मे सर्वसन सची पते अंत पदे जम पास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रसें भक्ते नर फेर न दे तरेंगे।

से सतगुरु मिली है दिव्य दृष्टि होई। हे सरनो मेरे साचे सुनने रूप ढाए, साचे सुनने रूप ढाए, श्री लाए सुनो सतबाणी, जिसने मंत्र हरिया हुआ रसना रसवाणी, साचे लख उड़ाणी।

महामनाय। थोड़ा सवना खावना थोड़ा बोलन गुरमत भाए, काल खाए सो कृत करे वड्डा होए ना आप गिनाए।

मन परचाए आसा विच निरास विलाए। भाई गुरदास साहब जी कहिंदे गुरु के सिख दा नेम है अमृत वेले दी संभाल, चौथा पहर सुबह कै सुरत्या उपजै चाओ, तन्ना दरियावा सिओ दो सती मन मुख सच्चा नाओ। उथै अमृत वंडिया करमी होए पसाओ, कंचन काया कसिया वानी सो चढ़े चढ़ाओ, जे होवै नदर सराप की बौड़ न पाई ताओ। ये वड्याई अमृत वेले दी नाम दानिश नांद्र डाए, मिठा बोलन निव चलन हथों देके भला मनाए, साध संगत मिल गाम दे रात देह नित चल चल जाए, साध संगत विच आके गुरु चरणा विच जुड़ करके

पर कह को परोसो देवानी यार पारसी पे, कह को परोसो संत गिरी की मजाज पे, कह को परोसो चार चातरी चलाकी चोख, मोको तो परोसो एक ग्रंथ महाराज पे, जुग हो जुग अटल सचे पातशाह, दसा पातशाहियां दी जगदी जोत।

ऐसा कोई सेवक है, ऐसा कोई जन है जिहड़ा मेरे प्रभु परमात्मा दे नाल मिलाप करा देवे। ऐसा सेवक भाई साहब भाई गुरदास साहब जी वर्गे जिहड़ी निराशा होके बीबा सुलखणी जिहड़ी चब्बे नगर दी रहण वाली वापस आ रही है गुरु हरगोबिंद पातशाह जी तो पुत्र लैण वास्ते गई सी, निराशी होके आ रही है तो भाई गुरदास साहब जी सुभावक मिल गए, कह लगे बीबा निराशी होके आ रही है, गुरु नानक दा घर है, वेखो किवें गुरु का सिख गुरु नाल जोड़ दिंदा है। विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़, गई सा सतगुरां ने हुक्म कर दिता तेरे कर्मां विच दात ही प्राप्त नहीं है। भाई गुरदास साहब जी कह लगे गल कोई नहीं है, कलम लै ला, शाही लै ला, कागज लै ला, लिखण वाला तो मेरा गुरु है ना। जुगती मिल गई जुगती, सेवका तो जुगती मिल जाती, ऐसा कोई सेवक मिल जावे कोई आन मिलावे मेरा प्राण जीवाया, कोई आन कोई आन मिलावे मेरा प्राण जीवाया, हो रहे ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वाहे वाह चले जियो, मिल मेरे प्रीतमा जियो, हो तुद बिन खरी नवाणी मैं नैणी नींद न आवे जियो, भावै आनना पानी। जिस वेले फिर जाती है साहब कह लगे कल आख्या सी कागज कलम अगे कर दते ने मेरी पीरी दे मालक सचे पातशाह, इन्ने त्रुठे कह लगे लिया बीबा वेखो सेवक मिल गया ना भाई गुरदास जी वर्गा, जिस वेले लिखन लगे तुसी जान दी वे के दी बजाए साता आ गया, कह लगे लै गुरु नानक दा घर ऐसा कृपालू है, किथे एक मंगदी सी किथे सत्तां दी कृपा हो गई है, नाल जुड़ गई मेरे साहबां दे रसना द्वारे गुरु गुरु गुरु दा जाप जपदी होई ता केवल फिर मेरे गुरु दा रूप ही बन गई है। ऐसा कोई सेवक है भाई गुरदास साहब जी वर्गा, भाई बहलो जी वर्गा, बाबा विधि चंद जी वर्गा, भाई शालो जी वर्गा, भाई आदम जी वर्गा, भाई भगतू जी वर्गा, गुरु सवारी संगत जी उस सेवक मिल जावे ते मेरा गुरु दे नाल मिलाप करा देवे। बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गा, बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गा सेवक होवे ता गुरु नाल मिला दंदा है। मैनू एक छोटा जिहा बचन याद आया जे आखो गज के सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबा जी बाबा बुढ़ा साहब जी खालसा जी बीड़ साहब विखे रहिंदे ने, जिन्हां नूं तुसीं अज कहिंदे बीड़, बाबा बुढ़ा साहब झबाल नगर दे कोल बिलकुल, इत्थे मझियां गाइयां नूं घा खोत खोत के पाया करदे सी, जमीन दी राखी रखदे सी, इत्थे ही तां सत्कारयोग साडे माता जी माता गंगा जी आए सन। जिस वेले गुरु सवारी संगत जी बाबा बुढ़ा साहब जी दा इन्ना नेम है, सारा दिन टहल सेवा दे विच लगे रहिंदे ने, और जिस वेले रात 11-12 वजदे ने फिर थोड़ा चिर आराम करदे ने, अमृत वेले फिर उठ जांदे ने, जिन्नी कार भेटा हो जांदी जे ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਜੋਗੀ ਬਾਹਰਲਾ ਲਿਬਾਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਸੰਤਾ ਧੂੜ ਬਿਭੂਤ ਸੁਲਾਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਚੌਗਣੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੌਣਾ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਘਾਰ ਪੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ।

श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पात साही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए हरि अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आय जिह जिथे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ ने दयावे ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी।

पंच महरखद साख सुनावे बंगालम माध माधव गावे ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया।

आप निरंजन सोए जिन से व्याव तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निदान गाविय सुनिय मन रखिय पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे असमाई गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाय करी जे तिसर ठोपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी।

हरे असंख मूर्ख अंधक ओरे असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिर आहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख

असंख नावी असंख थावी अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पा।

तीर्थ मलनाओ सब गुण तेरे मैं नहीं कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुविला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुती माहो कवन जित होवा आकार वेल न पाया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही।

एति सुरत न पाइया नदियां अतः वाह पवह समुंद न जानी है समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तोलना होमनी जे तिस मनो न विसर है अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के

आदेश तिसय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एक दूजी बहु लख हो लख वह लख वीस लख लख गिड़ा।

चुप ना जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण न है जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टै संसार, जिस हाथ जोर।

काल तित खंड मंडल वर पांड जे को कथ तयंत नयंत तित लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार बिख बिगसय कर विचार नानक कथन करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियारो अरुण मत विद हथियारे पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल करिए शब्द।

दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय।

जलन बुझे शीतल होए मनवा सतगुर का दर्शन पाए जीओ। आपा गुरु की अमृत बाणी की महिमा करन दा निमाणा जिहा जतन करिए। बेशक रब दे प्यारे संतां दे भी दिहाड़े मनाए जा रहे ने, पर वह जड़े महात्मा संत ने महापुरख ने उन्होंने भी टेक तो केवल बाणी की लई है। जे बाणी है तो वह संत महात्मा रब दे प्यारे ने, बाणी करके ही सब कुछ प्राप्ति है। जिथे महाराज ने इस बाणी नूं अमृत बाणी आखिया जे, उत्थे साहब जी कहिंदे जड़े रब्बी बाणी पढ़नगे ना जां अमृत बाणी नूं सरवण करनगे खालसा जी, उन्हां दे दुख रोग संताप सारे ही लै जाने ने, उतर जाने ने। जिन्हां नूं बोल आउंदे ने नाल बेशक पढ़ लिया करो। धन गुरु अमरदास महाराज जी दे अमृत वचन ने दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी। जेडे सची बाणी अमृत बाणी नूं सुणदे ने, धन गुरु अमरदास महाराज जी कृपा करदे दुख रोग संताप कलेश झगड़े सारे दे सारे खत्म हो जांदे ने। जिवें जिवें खालसा जी गुरु का सिख अमृत बाणी सरवण करदा है, तेवें तेवें उहनूं आनंद दी प्राप्ति हुंदी है, क्योंकि बाणी गुरु है। गुरु नूं मिलन करके आनंद मिलदा है। सतगुरु जी दे अमृत वचन ने मन रे सदा आनंद गुण गाए, सच्ची बाणी हर पाई है हर स्यों रहै सवाए। कहिंदे जे हरि परमात्मा नूं पाउणा है ना, प्राप्ति करनी है, तां फिर गुरु की अमृत बाणी जो गुरु रूप है, धुर की बाणी अमृत बाणी है, उस नूं प्यार विच

गुरु प्यारी साध संगत सारे गुरमुख माई भाई साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में बिरतियां जोड़ लईए। लै जाओ अपनियां बिरतियां हरिमंदर साहब जिथे इस समय पहला प्रकाश होना है। अज संपूर्णता होई है साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की। आओ सारे रल के सतगुरु की बाणी का उपदेश अपने हिरदे च वसाउणा करिए। वडभागी हो सारे जिन्हां नूं गुरु दरबार विच बहन का सुभाग सतगुरु ने बख्शिया। ये घड़ियां ये समा ये सुभागा समा सतगुरु की बख्शिश नाल प्राप्त हुंदा है। वधाई दे पात्र हन सारी प्रबंधक कमेटी जो उपराला करके गुरु कियां संगतां नूं गुरु चरणा विच सद के बिठा के गुरु दरबार विच सत्संग दियां शबरां ला के जोड़दे हन। आप भी संगतां धन हो जिहड़े अपना समा कीमती गुरु चरणा विच आ के बिताउंदे हो। महापुरश वचन करिया करदे सन जिहड़ा समा गुरु दे चरणा विच बैठ के बीत गया उस तो कई गुना वध समा दुखां दा बच जांदा है। दुखां कलेशां तो बंदा छुटकारा पा लैंदा है। साहिब बाणी विच लिखदे हन साई घड़ी सुलखनी सिमरत हर नाम। सो आओ सारे जुड़िए गुरबाणी दे शब्द नाल ते करो कृपा नाले सरवण करो नाले गायन भी करो।

गुरु प्यारी सात संगत, आज संगत ने हुक्म कीता है कि भाई गुरदास जी का वो शब्द भी सुना जिदे विच भाई साहब तुहाडियां गुरु प्यारियां संगतां नूं संबोधन करके वचन करते हैं कि गुरु प्यारे हो जदों तुसी गुरु दरबार विच जांदे हो जिहड़े आपने पैरां दे विच मौजे पाए हैं जुत्ते पाए हैं वो उतार दिओ। फिर पुछया महाराज की करिए, आख्या मेरे तन की चमड़ी दे मौजे बना के अपने चरणों में पा लो। कादे वास्ते? कहन लगे जदों तुसी मेरे शरीर की चमड़ी दे मौजे बना के अपने चरणों में पाओगे उहदे सदके गुरु दरबार की चरण धूड़ मेरे तन नूं मेरे मस्तक नूं लगेगी ते मेरे भाग मेरे जन्म सफले हो जाएंगे। आओ सारे सरवण करो, सारे नाल रल के गायन भी करो।

गुरु प्यारी साध संगत, आज सिख कौम दे महान महापुरुष बंदगी वालियां रूहां पूरन महापुरख बंदगी वाले धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज, धन धन बाबा मीहां सिंह जी, बाबा करतार सिंह जी, संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले दरगाही महापुरखां दी यादां अज इत्थे मनाईयां जा रही हैं। गुरु दीयां संगतां धन हन। साहिबानी विच लिखदे हन, बाबानियां कहानियां पुत सपुत करेन। जिहड़े अपने महापुरशां दीयां गुरुआं दीयां बजुर्गां दीयां यादां मनाउंदे हन, साहिब कहिंदे हन उहनां पुत्तरां नूं सतगुर कहिंदे हन सपुत्तर दा दर्जा मिल जांदा है। सो आओ, कुछ मिनट बाकी हैं, दास दा अज आखिरी दीवान है। थोड़े कोल असीसा लैके दास ने अज अगले पड़ां ते चले जाना है। असीसा बख्शे पिछले चार हफ्तियां तो आप दे दर ते सेवा कर रहे हैं, बेअंत भुल्लां हो जांदियां हन रहिंदियां विचरदियां। तह दिलों शुक्र गुजार हाँ सतगुर सच्चे पातशाह जी का ते प्रबंधक कमेटी का, जिन्हां ने समां दे के योग समझ के निवाजिया है। गुरु कीआं संगतां ने बहुत प्यार सत्कार नाल असीसां दित्तियां हन, इसे तरह हमेशा निवाजदे रहना। आओ, ये शब्द पढ़ के फिर समाप्ति।

सुर दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी।

गुरु प्यारी साध संगत सतगुर सचे पातशाह दी हजूरी विच अज बैरागमय समय विच सारे आप जुड़ बैठे हो। सत्कारयोग सरदार दर्शन सिंह जी जो सतगुर के हुक्म अनुसार श्वासां दी पूंजी नूं पूरियां करदिआं गुरु चरणां विच जा विराजे उन्हां दे अंतम अरदास विच शामिल होण वास्ते आपां सारे इकत्तर होए हां। सतगुर बख्शिश करन गुरबाणी दा फल कीर्तन दा महात्म उन्हां दी आत्मा नूं प्रदान करन सतगुर सदीव काल उन्हां नूं अपने चरणां विच निवास बख्शन। आओ इतनी हाजरी प्रवान करदे हुए अनंत शब्द दा जाप करदे हुए अगले अरदास विच शामिल होवां।

वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिह जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नि दयावे ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ जी नार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिना सिंह सिंघनिया ने धर्म हेर सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तन आरिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी सदके सवासा संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावर का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी सिखां दा मान नीवा मत उची मत पद दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जी ओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरु धामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो निमाणियां दे मान नितानियां दे ताम नियोटियां दी ओट नियासरियां दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे हजूर अरदास बेनती आप जी दा महावाक है जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए दे महावाक अनुसार धरकर दे प्रीतवान स्वर्गवासी दर्शन सिंह जो आप जी वालों दिती हुई सवासा की पूंजी भोग करके अज तो कुछ दिन पहला परलोक गमन कर गए अज सच्चे पातशाह जी सब तो पहला उन्होंने अंतम संस्कार होए परंत संगतां ने परिवार ने आप दे दर ते हाजरी भरी है जो उन्होंने निमित तुरकी बाणी के सहज पाठ रम सन उन्होंने संपूर्णता हुई राम कली सादे जाप होए उपरंत विरागमई शब्दों का कीर्तन छह पौड़ियां आनंद साहिब का जाप होया है समुची बाणी पढ़द्या सुनद्या भुल जुग की खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन का भाव विछड़ी आत्मा बख्श के सदा लई कल्याणता बख्शनी पिछे परिवार नूं संगतां नूं भाणा मनन का बल बख्शना ऐस वेले उन्हां दी अंतम अरदास विच बेअंत संगत ने आप दे दर ते हाजरी भरी है सब दियां दर हाजरियां प्रवान करनियां जी आप जी नूं सुंदर माला साहिब भेट कीते हन अंगीकार करने सेवकां दे लोक परलोज पड़दे कजने बख्शिया खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजिर है करी पाक साल सोच पवित्रा लाभ भोग हर राय आप जी दा सीत प्रसाद ज्यो छके नाम वाहिगुरू वाहिगुरू जपे श्री मुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जिना मिलिया आम दा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ
जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द।